0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: Get ready to move.
1: It's all about the beats. Wow.
2: Only Tune Super Hit Channel.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
5: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
6: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
5: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
6: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
5: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
6: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
5: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
6: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
5: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
6: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
5: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066969। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-201-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

कठिनाइयों में जाने दे, अब मुझ पे जो गुजर रही तुम्हें तो कोई खबर नहीं, तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं, चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
3: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Zabardast hits.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.
2: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
3: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक.
4: इट्स कमर्शियल टाइम.
5: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
8: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
10: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का.
5: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
12: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
5: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
12: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
5: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
1: You are listening 97.1 FM.

लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर दिन हम लेकर आते हैं बहुत सारी नई गपशप, नई गॉसिप्स और बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन।

सो वेल लिसनर्स, हमेशा की तरह आज भी शो में शामिल करेंगे बहुत सारे नए टॉपिक्स और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुछ आपकी कहानियाँ सुनी जाएंगी और कुछ आपको अपनी स्टोरीज सुनाई जाएंगी। सो इन सब के लिए आपको रहना होगा हमारे साथ इसी तरह से कनेक्टेड, क्योंकि जब आप हमारे साथ कनेक्टेड होंगे तभी होगी आपकी और मेरी कम्युनिकेशन, और फिर हमारी कम्युनिकेशन तब्दील होगी इन्फॉर्मेशन में, और फिर होंगी बहुत सारे गॉसिप्स। सो वेल लिसनर्स, डीवा डायलॉग का ये जो सफ़र है इसे मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और शो में शामिल करते हैं चटपटी गॉसिप्स। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो फिलहाल के लिए तो हमें इस कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक्स भी ज़रूरी होते हैं प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए। सो जी लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, इसी तरह से हमारे संग जुड़े रहें, बंधे रहें, और वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपके खिदमत में हाजिर हूँ, आपकी अपनी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैब पे। वेल, जैसा है कि आपको मालूम कि रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ मेरी और आपकी होती है कम्युनिकेशन, और फिर शो में शामिल किया जाता है इंटरटेनमेंट का डोज। तो हमेशा की तरह आज भी आपकी तमाम तर बातें सुनी जाएंगी और उन्हें शो में शामिल भी किया जाएगा, साथ ही साथ आप को अच्छे अच्छे पीस ऑफ एडवाइस मिलेंगी, कुछ मोटिवेशन की बातें करेंगे, साथ ही साथ इंस्पिरेशन की बातें करेंगे, और फिर आ जाएंगे गर्लीज के फेवरेट टॉपिक्स पे। सो डियर लिसनर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप भी हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं कि किस तरह से आप हमारे इस शो में शामिल हो सकते हैं। सो सिंपली उसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, सिंपली आपको उठा लेना है अपना फ़ोन। जल्दी से उठा लीजिए अपना फ़ोन, फ़ोन पे डायल कीजिए 01157100971। ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, यानी कि मेरा और आपका रابطے का नंबर। ये वो नंबर है जिसके ज़रिए से ना सिर्फ आप हमसे जुड़ सकते हैं बल्कि आप शेयर कर सकते हैं वो सब हमसे जो आप शेयर करना चाहते हैं किसी से, किसी ऐसे से जो आपको सुने, आपको समझे और आपको अच्छी अच्छी एडवाइस दे। तो अगर कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है या फिर आप किसी चीज़ को भी लेकर हैं कन्फ्यूज, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं सिंपली आपको एक अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस दूंगी और आपकी तमाम तर गुफ्तगू को आराम से, सुकून से और इत्मीनान से सुनूंगी। इसके साथ साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, या फिर आपका फेवरेट हॉबी क्या है। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस शो यानी कि डीवा डायलॉग में हम वो तमाम तर म्यूज़िक को ऐड करें जो कि हमारे लिसनर्स सुनना चाहते हैं, और साथ ही साथ शो का थीम, शो का टॉपिक और ओवरऑल डिज़ाइन भी हमारे लिसनर्स के अकॉर्डिंग हो। सो लिसनर्स, इंतज़ार किस बात का है, अभी उठाइए फ़ोन, अपना नाम लिखिए, साथ ही साथ कोई प्यारा सा पैगाम या आप अभी क्या कर रहे हैं ये भी मुझे बता सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी कि आप इस वक्त दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं और क्या करते करते ट्यून कर रहे हैं। आप सभी सोचते होंगे कि मैं अक्सर औकात आपके तमाम तरह मैसेजेस को शो में शामिल नहीं कर सकती, तो उसकी वजह यह है कि बातें करते करते बिल्कुल भी वक्त का अंदाज़ा नहीं होता और शो का टाइम भी इतना लिमिटेड सा है। लेकिन मैं आपकी तमाम तरह टेक्स्ट को लाजमी पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक हमसे शेयर करते हैं, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलती है कि किस तरह से मैं अपनी डिवाइस को खुश कर सकती हूँ। साथ ही साथ आप सभी को बताती चलती हूँ कि आप किस तरह से हमें ट्यून कर सकते हैं। सो सिंपली www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि बन सकते हैं आप इस फैमिली का हिस्सा।

So, अगर आप बनना चाहते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा या फिर आप जानना चाहते हैं हमारे आने वाले तमाम तर लेटेस्ट शोज की अपडेट, तो हर तरह की अपडेट, हर तरह की न्यूज़ आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पर। और आप ये भी जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में है आने वाला। सो इस सब के लिए आपको लॉग इन करना होगा हमारी वेबसाइट को। वैसे अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका तरीका भी बहुत सिंपल सा है। आइए चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सो आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहाँ जाके आपको सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले। जी हाँ, यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपका और जो मेरा साथ है वो जुड़ा रहे और हम एक दूसरे के साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें और एक दूसरे को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। सो जी कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और इस खूबसूरत से दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने बाकायदा तौर पर आगाज़ नहीं किया तो आइए ऑफिशियली इस दिन का और इस शो का आगाज़ करते हैं एक अच्छे से एनर्जेटिक से ट्रैक के साथ। सो दे लिसनर्स, ये ट्रैक सुनते हैं, वैसे तो ये थोड़ा सा इमोशनल है बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और रिसेंटली मैंने इस ट्रैक को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपने लिसनर्स के साथ भी शेयर करूँ। तो अब ये आप ही सुनकर बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगता है। सो जी मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार, तब तक के लिए आप ये खूबसूरत सा गाना एंजॉय करें।

लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा गाना? अच्छा, मुझे ये गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लिसनर्स के साथ भी इसे शेयर किया जाए। वेल, अगर आपको भी इस तरह का सिंपल सा सॉफ्ट सा म्यूज़िक पसंद है मेरी तरह, तो आप मुझे एग्री कर सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको है थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक पसंद, तब भी आप बता सकते हैं, क्योंकि एट द एंड शो में तो हम वही गाने शामिल करेंगे जो कि आपको पसंद हैं। वेल लिसनर, बात करते हैं आज के इस दिन की। सो अब हमने ये एनर्जेटिक सा ट्रैक सुन लिया है, सो अब हम बाकायदा तौर पर स्टार्ट करेंगे आज का ये दिन। और अगर आप सभी ने नोट किया हो तो आज का दिन कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू द अदर डेज। वेल, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि आज के दिन में कुछ अलग सी बात है। अगर तो आपको भी ऐसा लग रहा है तो डू लेट मी नो। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का दिन कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। सो लिसनर्स, उसका मेन रीज़न ये है कि टुडे इज़ माय बर्थडे। सो इस तरह से मुझे आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अलग सा, एनर्जेटिक सा और ब्यूटीफुल सा लग रहा है, क्योंकि इंसान हमेशा उस दिन को बहुत ही ज़्यादा खुश होता है जिस दिन वो इस दुनिया में आता है। वेल, ये तो मेरी थ्योरी कहती है, लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी बर्थडेज पर इमोशनल हो जाते हैं या फिर सैड रहते हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक दूसरी कैटेगरी के लोगों से है।

पे हैं 0115710971 इस नंबर के थ्रू जरा अपना ओपिनियन शेयर करें कि आपका इस बारे में क्या कहना है. वैसे मैंने जहां तक अपनी जिंदगी में देखा है तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे बहुत सारे लोग मैच्योर हो जाते हैं और वो फिर इस तरह के डेज को इवेंट्स को उस तरह से वैल्यू नहीं करते, सेलिब्रेट नहीं करते और समझते हैं कि शायद अब उनकी एज नहीं है कि वो इस तरह के काम करें. बट ट्रस्ट मी, एज इज़ जस्ट अ नंबर. आप जितने भी बड़े हो जाओ, जितने भी ग्रो अप कर लो, लेकिन आपको इन तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर इवेंट्स को और इन छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एन्जाइटी होती है, बहुत सा काम करना पड़ता है और ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुश्किल ही चल रही होती है. सो उस मुश्किल ज़िंदगी में, उस टफ़ रूटीन में, इसी तरह के जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं वो इंसान को अच्छा फील करवाते हैं और एक अपनाइयत का एहसास होता है जब आप अपने इस इवेंट को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी समवन स्पेशल के साथ सेलिब्रेट करते हैं.

तो इसी वजह से आज मेरा मूड बहुत अच्छा है. सो मैं सोच रही हूँ कि इतने अच्छे मूड में कुछ अच्छा सा प्ले किया जाए, क्योंकि म्यूज़िक इटसेल्फ इट्स अ थेरेपी. और जब भी आप गाने सुनते हैं या आप अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुनते हैं, सो अच्छा अच्छा फील होता है. सो इसी के लिए एक प्यारा सा गाना प्ले करती चलती हूँ. आइए मिलकर सुनते हैं यह खूबसूरत सा ट्रैक, एंड देन फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. और गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा, क्योंकि अब से लेके ठीक 2 घंटे तक हम तो रहेंगे साथ साथ.

लिसनर, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं वो हमारी लाइफ को स्पेशल बना देती हैं, खूबसूरत बना देती हैं और मेमोरेबल, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में देखा है और अपने आसपास जितने भी मेरे लोग मौजूद हैं उन सभी की जिंदगियों में देखा है। सो माय डियर लिसनर्स, आप जितनी भी स्ट्रगल करें, जितनी भी मेहनत करें, एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ हमेशा रहती हैं वो यादें, वो अच्छी यादें जो आपको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अच्छा फील करवा सकती हैं। सो कोशिश किया करें कि आप ये मत सोचा करें कि एज़ यू ग्रो अप तो अब बस हम मैच्योर हो चुके हैं, सो अब वी डोंट नीड टू सेलिब्रेट अवर बर्थडेज एंड अदर स्पेशल ओकेजन्स, क्योंकि इन्हीं ओकेजन्स को सेलिब्रेट करके ही तो हमारी मेमोरीज बन सकती हैं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि जैसे कि है आज मेरा बर्थडे, तो आज का जो हमारा शो का थीम होगा वो भी थोड़ा बर्थडे रिलेटेड होगा। सो इसीलिए मैं थोड़ी ज़्यादा इस हवाले से डिस्कशन कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती हूँ कि आपको अपने लव्ड वंस के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो इसी के लिए मैंने सोचा कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और ज़रा हमारे लिसनर्स की भी राय जानेंगे कि उनका इस हवाले से है क्या कहना। वेल लिसनर्स, बचपन में हुआ करता था कि जैसे जब हम स्कूल टाइम पे होते थे तो जब हमारा बर्थडे होता था तो हम मोस्टली स्कूल से या तो ऑफ ले लेते थे या फिर अगर स्कूल जाएं तो कोई ना कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन कर लेते थे या फिर चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे अब हम बड़े हो चुके हैं, सो आज एक ऐसा वक्त आ चुका है कि आप अपने बर्थडे पे छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि आपको काम पे जाना होता है। इसी तरह बहुत सारे मामूलात ज़िंदगी हैं जो आपको साथ साथ चलाने होते हैं। सो आप उस तरह से अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे पाते जिस तरह से आप बचपन में खुद को देते थे, बट इट्स ओके क्योंकि इट्स लाइफ, ज़िंदगी में फिर काम तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जैसे कि हैज मेरा बर्थडे तो इसको मज़ीद स्पेशल किस तरह से बनाया जा सकता है। सो इसीलिए मैंने अपनी फ्रेंड के साथ एक गैदरिंग प्लान कर ली। मैंने सोचा कि ऑफिस से फ्री होने के बाद हम वहाँ चले जाएंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे और इसी तरह से हमें साथ में कुछ टाइम ही स्पेंड करने को मिल जाएगा जो कि डेली बेसिस पर हमें नहीं मिलता क्योंकि वी ऑल आर वेरी बिजी इन आवर लाइफ। सो आप सबको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आज आप में से भी है किसी का बर्थडे या फिर आने वाला है आपका बर्थडे, तो कोशिश करें कि आप अपने बर्थडे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान किया करें और खुद को खुद ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया करें, क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे कि कोई आपके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करेगा सो इस तरह तो नहीं होगा। खुद से प्लान्स बनाया करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और घर वालों के साथ, और इस तरह से फिर आपकी अच्छी सी यादें बनेंगी और फिर इन्हीं अच्छी अच्छी यादों के संग हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। सो जल इस एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 01157100971 ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। सो आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह का है म्यूज़िक पसंद, या फिर आप अपने किसी लव्ड वन को कर सकते हैं कोई भी अच्छा सा गाना डेडिकेट। सो उसके लिए आप हमें ज़रूर बताइएगा और हम आपके पसंदीदा गानों को ज़रूर शो में शामिल करेंगे। सो जल लिसनर्स, इसी के साथ ही हमें मौसूल हो चुकी है एक अदद सॉन्ग रिकमेंडेशन। सो जैसा कि आपको मालूम है कि हम शो में वही तमाम से गाने शामिल करते हैं जो हमारे लिसनर्स को होते हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार फिर होती है आपसे मुलाकात और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

वेल लिसनर्स, अभी वक्त हुआ है शो में कदत कमर्शियल ब्रेक का। सो रिवर डायलॉग में शामिल करते हैं इस ब्रेक को। आपसे मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए इसी तरह से हमारे संग जुड़े रहें, बने रहें, एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी टाइनी ब्रेक।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नोटिगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे दैनिक फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डी वाला लोग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। तो लिसनर्स, अब स्टार्ट करते हैं शो का अगला सेगमेंट, जिससे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को मज़ीद खूबसूरत और प्यारा बना सकते हैं। सो उसके लिए बस ज़िंदगी में ज़रूरत ये होती है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उन्हें एहसास दिलाएं कि किस तरह से वो हमारे लिए स्पेशल हैं, और अपनी लाइफ के तमाम तर छोटे छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करें, चाहे वो बर्थडे हो या फिर हो कोई भी ओकेजन। सो लिसनर्स, अब बात करते हैं डीवा डायलॉग में थोड़ी सी मोटिवेशन की और इंस्पिरेशन की। जैसा कि है आप सभी को मालूम कि डेली बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं एक अच्छा सा मोटिवेशनल सा कोट, एक ऐसा कोट जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को बदल देगा बल्कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी सी तब्दीलियां लेकर आएगा।

सो हमारा आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो भी कुछ इसी तरह से ही है. मैं सोच रही थी कि अच्छा सा ये कोट हमें शामिल किया जाए, लेकिन साथ ही हमें आ गई है एक सॉन्ग रिकमेंडेशन. सो फिलहाल के लिए हम ये खूबसूरत सा ट्रैक प्ले कर देते हैं, क्योंकि हमारी लिसनर्स सुनना चाहती हैं अच्छा सा गाना. और आपको मालूम है कि हम तमाम तर लिसनर्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं. सो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक. ट्रैक के उस पार फिर हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी मोटिवेशन प्लस इंस्पिरेशन डिस्कशन.

डियर लिसनर्स, स्टार्ट करते हैं आज के इंस्पिरेशनल से कोट. सो बेसिकली ये कोट ना सिर्फ आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देंगे, बल्कि आपका जो पर्सपेक्टिव होगा उसको भी ड्राइव करेंगे और साथ ही साथ आपको देंगे मेंटल क्लैरिटी. सो आज का फर्स्ट कोट स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट कोट सेज, डू द बेस्ट यू कैन अंटिल यू नो बेटर, देन व्हेन यू नो बेटर डू बेटर. सो बेसिकली हमारे इस सिंपल से कोट का मीनिंग कुछ यूँ है कि आप अपना बेस्ट देते रहो अंटिल जब तक आपको यह मालूम नहीं होता कि आखिरकार बेहतरीन होता क्या है. और जैसे ही आपको मालूम हो जाए कि अच्छा इस काम में ये चीज़ बेहतरीन समझी जाती है या इस तरह से मैं ये काम करूँगा तो वो एक बेहतरीन नतीज मुहैया करेगा, तब जाकर आप अपना बेहतरीन देना शुरू कर दें. सो अगर इस कोट को मैं सिंपली हमारी रियल लाइफ से रिलेट करूँ तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि वेन एवर यू स्टार्ट अ न्यू टास्क, कोई सा भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट नो अबाउट एडिटिंग एंड यू स्टार्ट एडिटिंग, सो ऑब्वियसली कि स्टार्टिंग में आपको वो काम नहीं आता होगा, आपको नहीं समझ आएगी कि किस तरह से आपने ये काम परस्यू करना है, कंप्लीट करना है या फिर आगे बढ़ना है. सो एट दैट मोमेंट आप अपना बेस्ट दे सकते हैं सिंपली, लेकिन जैसे जैसे आप वो काम करते चले जाएंगे सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इस काम की ग्रिप किस तरह से है, मैं किस तरह से इसको स्टार्ट करूँ तो ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हर्डल्स नहीं आएंगे. सो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ में प्रो हो जाते हो और फिर आप अपना बेहतरीन देना शुरू कर दो. सो बेसिकली ये कोट हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेली बेसिस पर कोई न्यू काम, कोई न्यू टास्क स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू शुरू में उन्हें नहीं मालूम होता कि किस तरह से हम इस काम को सर अंजाम दें या कैसे करें. और फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो नाउमीद हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा चलो ये मुझसे नहीं हो रहा या मुझे मालूम नहीं है तो रहने देते हैं, ऐसे करने की क्या ज़रूरत. सो कोट ये कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मालूम या कोई काम आपके लिए नया है तो आप ज़रूर उसे ट्राई करें, ज़रूर उसे शुरू करें, इस उम्मीद से कभी मत छोड़ दें कि ये मैं नहीं कर सकती. और फिर जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे तो चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी और फिर आप उस काम में महारत हासिल कर लेंगे. सो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा इंस्पिरेशनल सा कोट? वेल, उम्मीद तो यही है कि इस कोट से आपको जो सबक मैं बताना चाह रही थी, जो लेसन प्रोवाइड करना चाह रही थी, वो मिल चुका होगा और ये आपकी अमली ज़िंदगी में बहुत काम आएगा. सो लिसनर्स, इसे ये साथ ही एक अच्छा सा ट्रैक प्ले करती हूँ आप सभी के लिए. ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरा फेवरेट गाना है. सो कुछ गाने आपके पसंद के शामिल किए गए हैं, सो अब मैं सोच रही हूँ कुछ अपनी पसंद का भी शामिल किया जाए. तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक. ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात एंड देन फिर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे.

चलिए आइए लिसनर स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कोट, एंड उम्मीद तो यही है कि ये कोट भी आपको काफ़ी ज़्यादा बदल देगा। और अगर आप कभी नेगेटिव या फिर इस तरह से फेलियर के बारे में सोचते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। सो आवर सेकंड कोट सेज, डू नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। सो बेसिकली इट्स अ चाइनीज कोट और एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर ने यह खूबसूरत सी बात कही है। सो बात का मफहूम आपसे शेयर करती हूँ। सो हमारा सेकंड कोट कुछ यूँ है और ये कहता है कि कभी भी इस चीज़ से मत डरें कि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, बल्कि हमेशा ये ख्याल अपने जहन में रखें कि अगर आप स्टिल एक जगह खड़े रह गए तो क्या होगा। अच्छा, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अपने सर पर सवार कर लेते हैं कि अच्छा, अगर उन्होंने कोई नया काम स्टार्ट किया है, कुछ भी स्टार्ट किया है, तो वो पहले ही दिन उसमें मास्टरमाइंड बन जाएं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रो हो जाएं, या अगर हमने कोई भी इनपुट डाला है तो फौरन से हमें आउटपुट मिल जाए। लेकिन ऑनेस्टली गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। सो अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो आपके लिए तो वो ज़रूर वक्त लेगा। सो इस चीज़ से कभी भी मत डरा करें कि आप स्लोली ग्रो कर रहे हैं, आपके आसपास जितनी भी कम्युनिटी है वो आपसे तेज आगे बढ़ रही है, क्योंकि यू नेवर नो कि एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन स्ट्रगल इन देयर लाइफ। सो आपको नहीं पता कि वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं या उन्होंने इस काम को कब स्टार्ट किया था। आपको बस ये नज़र आता है जब उनका रिजल्ट सामने आता है या वो कुछ भी प्रोवाइड करते हैं। सो आपने कभी भी इस चीज़ को सर पर सवार नहीं करना और अपनी लगन से मेहनत से आगे बढ़ते चले जाना है आहिस्ता आहिस्ता। पहले आपको लगेगा कि स्लो प्रोग्रेस है, फिर टाइम के साथ साथ आपकी प्रोग्रेस खुद ब खुद फास्ट होती चली जाएगी।

तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा मोटिवेशनल सा कोड? वेल, इस हवाले से है, अगर आपका भी कुछ कहना सो सिंपली 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर. सो आप इस नंबर के थ्रू हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपके क्या ख्यालात हैं इस सब के बारे में, या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां आपको ऐसा लगा हो कि आप बहुत ज़्यादा इनपुट ऐड कर रहे हैं लेकिन आपको उस तरह से आउटपुट नहीं मिल रहा. सो डू लेट मी नो, क्योंकि बाज़ुकात हम अपने दिल का गुबार जब किसी दूसरे से शेयर करते हैं तो हमें काफ़ी हल्का हल्का महसूस होता है, और जो चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल होती हैं वो दूसरे के एक सिंपल से ओपिनियन से या फिर एक छोटी सी एडवाइस से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं. सो डियर लिसनर्स, इसी के साथ ही इस सेगमेंट को करते हैं एंड, और शो में शामिल करते हैं एक अदद मजीद अच्छा सा ट्रैक. सो आप भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का ट्रैक सुनना है, वो भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये ट्रैक शामिल कर रही हूँ. सो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक. ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अगला सेगमेंट.

लिसनर्स, मैं जब भी ये ट्रैक सुनती हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले मेरे माइंड में आता है कि मैंने मैक्सटन हॉल को कंप्लीट करना है, बट समहाउ नहीं हो पा रही कंप्लीट. सो द लिसनर्स, अगर आपने देखा है सीजन 2 तो आप मुझे बता सकते हैं या फिर मोटिवेट भी कर सकती हैं कि क्या इज इट वर्थ द हाइप या फिर मुझे स्किप कर देना चाहिए. क्योंकि जब भी मैं ये ट्रैक सुनती हूँ, मुझे मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि ओह, मेरी फेवरेट सीरीज का सीजन 2 रहता है और मैंने अभी तक इसे कंप्लीट नहीं किया. सो जी लिसनर्स, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आजकल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुकी है. डेली बेसिस पे बहुत सारे काम कर्ज करने पड़ते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता क्या उस तरह से सीरीज़ या फिर आप मूवीज़ को टाइम दें. सो है, अगर आपने देखा है इसका सीजन 2 तो आप फिर मुझे अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा या फिर क्या मुझे देखना चाहिए या नहीं. सो 01157100971 है आपका और मेरा रابطे का नंबर. सो इसी नंबर के थ्रू आपकी और मेरी कम्युनिकेशन हो सकती है. सो आप मुझे बता सकते हैं. बहरहाल अभी शो में वक्त हुआ है, यानी कि डीवा डायलॉग में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो कभी कभी दिल तो करता है कि कमर्शियल ब्रेक्स बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये हमारी जो डिस्कशन होती है या फिर कह लो गुफ्तगू, उससे थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट कर देती है. लेकिन चूंकि कमर्शियल ब्रेक भी ज़रूरी है और इसके बिना प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता. सो द लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं. फिलहाल के लिए इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब आपसे मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार. तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, इसी तरह से हमारे संग जुड़े रहें, बने रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें. वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715222

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद करती हूँ डीवा डायलॉग में, जो कि है मेरा आपका हम सभी का फेवरेट शो। और मैं हूँ आपकी होस्ट आर्चिस एन फातिमा, एक नए दिन के साथ और एक्साइटेड न्यूज़ के साथ। वेल लिसनर्स, अभी ब्रेक में मैं आप सभी के मैसेजेस वगैरह चेक कर रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू हु आर मेकिंग माय स्पेशल डे मोर स्पेशल। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि बेस्ट बर्थडे गिफ्ट इज अ गिफ्ट, बट फॉर मी इफ यू give me some kind of love, so I think it's like more beautiful than giving me some materialistic gifts. So the listeners, इसी के साथ ही डीवा डायलॉग का अगला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसा सेगमेंट जो कि मेरा आपका बल्कि हम सभी का है फेवरेट। सो जैसे कि है आज मेरा बर्थडे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और हम सभी के घरों में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा खाई जाती है। लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम जाके बेकरी से परचेज़ कर लेते हैं या फिर किसी भी रेस्टोरेंट से, क्योंकि हमें लगता है कि शायद इसे घर पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इट्स लाइक अ आर्ट, अगर आप इसको घर पर बनाएं तो ये बहुत अच्छा बनता है, टाइम भी कम लगता है। सो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी ही रेसिपी। सो वेल लिसनर्स, अगर आप अभी कोई काम शाम कर रहे हैं सो अपने कामकाज को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यमीएस्ट रेसिपी। सो ताकि आप उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। सो जब तक आप अपनी नोटबुक रेडी करते हैं या फिर आप अपनी कॉपी तैयार कर लेते हैं ताकि आप इंग्रेडिएंट्स लिख सकें, तो मैं सोच रही हूँ तब तक हम एक अच्छा सा ट्रैक सुन लेते हैं और फिर ट्रैक के उस पर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी।

लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। सो आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा चॉकलेट केक। इट्स अ वन बाउल केक और बहुत ही यमीएस्ट है, सिंपल सी रेसिपी है, आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा इसमें। सो मैं सोच रही थी, जैसे कि आज बर्थडे की बात हो रही है तो बर्थडेज आर इनकम्प्लीट विदाउट केक, सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसकी रेसिपी को डिस्कस करें, क्योंकि हमारी डिवास को केक भी बनाना आना चाहिए। सो टोटली इसको बनाने के लिए आपको लगेंगे 30 to 40 minutes, और आप आराम से इसे अच्छे से बेक कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसा केक बना सकते हैं जैसा कि आप किसी भी मार्केट से या फिर बेकरी से परचेज करते हैं। सो अब आपसे शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स, यानी कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 3/4 cup, यानी कि 3 full cup एंड 1/2 cup। साथ ही साथ हमें चाहिए शुगर 2 cups, कोको पाउडर 3 to 4 cups, बेकिंग सोडा 2 teaspoon, बेकिंग पाउडर 1 teaspoon, सॉल्ट 1 teaspoon, इसमें शामिल होंगे अंडे 2 अदद, साथ ही साथ इसमें शामिल होगा बटर मिल्क। अगर आपके पास बटर मिल्क ना हो तो सिंपली आप 1 cup मिल्क में 1 tablespoon विनेगर ऐड करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ शामिल होगा ऑयल, आप यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर कनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आपको यूज़ करना है 1.5 cup। हमारा अगला इन्ग्रीडियंट है वनीला एक्सट्रैक्ट 1 teaspoon, गर्म पानी या फिर कॉफ़ी 1 cup। तो ये थे हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स जिनकी मदद से हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा यम्मीएस्ट सा चॉकलेट केक। वेल, इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आप सभी से शेयर कर दिए एंड आई होप कि आप सबने नोट कर लिए होंगे, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपसे हो गया है कुछ मिस तो आप 01157100971 इस नंबर के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी तमाम तक क्यूरीज को दूर करूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी मेकिंग की जानिब कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे। सो सबसे पहले आप ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर से लेकर 350 डिग्री पर गर्म होने के लिए रखते हैं। किसी भी बेकिंग पैन पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर या फिर बटर पेपर लगाकर अच्छे से सेट कर लें। अब आपने क्या करना है, एक अलग से बाउल ले लेना है, ठीक है। इस बाउल में आपने शामिल करना है मैदा, चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, साथ ही साथ नमक। इन तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद हाथ की मदद से या फिर विस्की की मदद से आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। याद रखिएगा कि जब आप इसे मिक्स कर रहे हों तो मेक श्योर कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना बने। सो जैसे ही आपका अच्छी तरह से ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं और एक अच्छा सा थिक सा बैटर बन जाए, सो अब आरी आती है कि हम इसी बाउल में अंडे शामिल करेंगे, साथ ही साथ बटर मिल्क, ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट, और अच्छे से स्पैचुला की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इन्हें हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर हम ब्लेंडर या फिर इलेक्ट्रिक मिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा होगा, बस आपको आराम आराम से उसे मिक्स करना है तो ईजिली हो जाएगा।

शामिल करेंगे 35 से लेकर 40 मिनट के लिए, अच्छी तरह से इसे बेक कर लेंगे। सेंटर में टूथपिक डालकर आपने वक्फे वक्फे से इसे चेक करते रहना है कि अगर आपकी टूथपिक आराम से साफ निकल आए तो इट मीन कि आपका केक बहुत अच्छी तरह से वेल बैलेंस कुक हो चुका है। नहीं अगर तो नहीं निकलती तो इट मीन्स कि अभी इसे बेकिंग की ज़रूरत है। सो अब आ जाती है फाइनल स्टेप की, सो केक को ओवन से निकाल कर 5 से लेकर 10 मिनट तक ठंडा कर लेंगे, फिर अच्छे से पीसेस कट करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, हल्का सा कोको पाउडर। सो इट्स अप टू यू, इट्स टोटली योर चॉइस कि आप इसको किस तरह से खाते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। सो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी, और देखा आप सभी ने कितनी सिंपल थी, कितनी बेसिक थी, यानी कि आपको कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है इस केक को बनाने के लिए, और ना ही आपको ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, और ये यमी सा डिलिशियस सा केक हो जाएगा तैयार। सो वेल लिसनर्स, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आज ही, जैसा कि आज का दिन भी इतना अच्छा है, सो अक्सर औकात होता है कि खाना खाने के बाद दिल करता है कुछ मीठा हो और फिर फैमिली के साथ मिल बैठ कर खाया जाए। सो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप आज ही इस वन बाउल चॉकलेट केक को ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे लाजमी बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपी, या फिर आपने जब इसे बनाया तो क्या आपको डिफ़िकल्ट लगी या मुश्किल। उसके लिए 01157100971 आप इस समय के तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ हैं पसंद, ताकि हम शो में हर उस तरह की रेसिपीज़ को ही ऐड करें जो कि हमारे लिसनर्स को हैं पसंद। बस ये थी वो केक की रेसिपी जो मैंने कल रात ट्राई किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि हमें खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट खुद ही देना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अलग सा अतरंगी सा बनाने की कोशिश करूं। तो मैंने ये केक ट्राई किया एंड ये बहुत अच्छा बना था। सो आप भी लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा। सो डियर लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी से शेयर करती चलती हूँ, www.radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं, बल्कि आप बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, कौन सा आरजे किस दिन किस शो में है आने वाला, या फिर रेडियो फजा 97.1 FM पर कौन कौन से नए इवेंट्स हैं होने वाले। साथ ही साथ बताती चलती हूँ कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, आप चाहते हैं कि आपका ये सफ़र बन जाए और खूबसूरत और हंसी, इस सफ़र को खूबसूरत और हंसी बनाया जा सकता है किस तरह से, हमारी खूबसूरत सी आवाज़ों को ट्यून करके। उसके लिए फजा डैप के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपका सारा फोकस ड्राइविंग पे होना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग इट्सेल्फ इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। और जब भी कभी मैं ड्राइव कर रही हूँ या भी कहीं पर भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हल्का सा भी बंदे का ध्यान इधर से उधर गया तो हो सकता है कि बड़े हादसे का मौजूद बना पड़े। सो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है।

लिसनर्स, इसी के साथ ही डीवा डायलॉग का ये जो सफ़र हमने दो घंटा पहले स्टार्ट किया था अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, यानी कि अब शो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, कंप्लीटिंग मराहिल में है। सो जाते जाते यही कहूँगी कि शो का वक्त ख़त्म हुआ चला है, लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे आज बर्थडे विश किया, और उन तमाम लिसनर्स के लिए भी जिन्होंने हमारे

0: You are listening to
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो जी, मैं हूँ आपकी आरजे दीवर एंड ओनली आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलू राज। खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह सलू राज की। उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन जो है वो बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसा गुजर रहा है दिन। और दिन है आज मंडे का, मंडे मेलेडीज लेकर आती हूँ आप सबके लिए, ताकि आपका जो है बाकी पूरा वीक जो है अच्छे से अच्छा गुजरे। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका जो मंडे है ना, इसको मैं अच्छे से अच्छा बनाऊँ ताकि आपका वीक अच्छा गुजरे, क्योंकि वीकेंड के बाद दोबारा उस रूटीन पर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तो सुस्ती भी चढ़ जाती है और फिर सुबह सवेरे उठकर वो जो सख्त किस्म के मूड बने होते हैं ना, उनको ठीक करने के लिए मैं आती हूँ ठीक और ठीक 2 बजे तक। हैवल बताइएगा वीकेंड कैसा गुजरा, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कौन आया कौन नहीं आया, कहाँ जाना था और कहाँ का प्लान कैंसिल हो गया। फिर उसी के बाद ऑफिस की तरफ निकल आए हैं, तो दिन आपका कैसा गुजरा है ऑफिस में आते साथ। अगर थोड़ी सी झड़क पड़ चुकी है यानी कि डांट पड़ चुकी है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है और रेडियो फजा को सर्च कर लेना है, मीन्स के गूगल पर जाना है, radiofaza.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारा प्रोग्राम सुनने को मिलेगा। या फिर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पर करता है, सवाल वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से। अब बताने से पहले तो मैं ये भूल गई कि आप हमसे रابطہ कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो रابطے का नंबर बड़ा ही प्यारा था 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। घर बैठी हुई 3 जो मुझे सुन रही है, बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुन रही है। मैं भी शायद आप यही सोच रहे हो कि आज के दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपी प्रोग्राम में शामिल करूँगी। लेकिन अगर कोई रेसिपी अपनी प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहें तो मैं उसको भी लाजमी करूँगी, या फिर कोई रेसिपी आप मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं ना, तो वो भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा, पैसेंजर्स को जो है वो उनकी मंजिल तक खैरियत से पहुंचाइएगा, क्योंकि एक मकसद होता है और उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको जो है ना वो दिल से मेहनत करनी चाहिए। वेल प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन मेरी और आपकी, होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर इंटरटेनमेंट। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। हमेशा की तरह मैं प्रोग्राम में छोटा सा टॉपिक शामिल कर देती हूँ, इस टॉपिक के हवाले से जो डिस्कस स्टार्ट की जाती है। लेकिन अभी मेरी कुछ दिन से यही चीज़ चल रही है कि मैं जो हूँ ना मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, मैसेज रिसीव होते हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करके फिर उसी के हवाले से छोटी मोटी डिस्कस जो है इन्फॉर्मेशन जो है जिस बारे में उस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे पता हो तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बात मुझे ही पता हो, क्योंकि कभी कभार कुछ बातें मुझे नहीं पता होती तो मैं आप मुझे बताते हैं, कभी कभार आपको कोई बात पता नहीं होती तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरह जो है ना वो आगे पीछे नॉलेज में इजाफा होता रहता है, तो कभी कभार जो है ना ऐसी बातें समझ भी लेनी चाहिए, क्योंकि कभी अगर आप किसी ऐसी महफिल में बैठे हैं और वहाँ पर आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करने का मौका मिले तो आप कम से कम कर तो सकें ना, और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये बात किसने बताई है, तो फिर उस बेगानी महफिल में जब एक उस इंसान का जिक्र होता है जिसको वहाँ पर कोई भी नहीं जानता ना, तो बड़ी वाह होती है। अमूमन लोग जो है ना वो जब किसी को किसी तरह का लेक्चर देते हैं ना या कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कहते हैं कि यार क्या, इसको लगता है कि सब कुछ इसी को ही पता है, मतलब बोली जा रहा है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो इंसान वाकई सच बोल रहा होता है, लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। अच्छा, हमारे माशरे में ये बड़ा मसला है कि हम एक इंसान के साथ अगर बात कर रहे हैं तो वो एक हद तक बात हो रही है, अगर अगला इंसान बोली जा रहा है तो आप हम लोग जो है ना सिर्फ उसके चुप होने का इंतजार करते हैं ताकि हम पलट कर फौरन जवाब दें, ना कि उसकी बातों पर अमल करते हैं, ना कि उसकी बातों को दिल से गौर से सुनते हैं। पर हमें हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है खूबसूरत से ट्रैक के साथ। अगर इससे पहले बता देते हैं, अगर आप अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जगाना चाहते हैं तो आप हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं। आप ने गूगल पर सर्च करना है radiofaza.co.uk, वहाँ पर आप हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं, वाला अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जगा सकते हैं। सो वेल, उसी के साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खूबसूरत से ट्रैक के साथ। अभी मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश मौजूद थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी पसंद का एक ट्रैक शामिल किया जाए। मैं काफ़ी दिनों से जो है ना इस चीज़ को मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ था कि मैं इस ट्रैक को प्ले करूँगी, लेकिन वो फिर वही बात आ गई ना, जब प्ले करना हो तब मुझे कोई चीज़ याद आती नहीं है कि प्ले करना क्या था। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं वीकेंड पे जाती हूँ ना, और जो भी एक्टिविटी मैं करती हूँ, जो भी मैं उन दिनों में कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास इकट्ठी हुई हो या कोई भी किसी तरह की बात हो, तो मैं आपके साथ लाजमी आके शेयर करती हूँ। और आई नो कि आपने भी मेरे लिए बातें रखी होती हैं, क्योंकि लंच बॉक्स को हम ओपन करते हैं उसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी बातें छुपी होती हैं जो आपने मुझ तक पहुँचानी होती हैं। सवाल चलते हैं खूबसूरत ट्रैक की जानिब। इस ट्रैक के उस पार फिर आपसे मुलाकात करके एक और छोटी सी फरमाइश को शामिल करेंगे। अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड 97.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च। सोल जी के साथ साथ गाना इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया नहीं था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, पसंद की चीज़ हमेशा जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। सो अभी जो है मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश है, उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान, एक तो मुझे इनके नाम नहीं याद रहते यार, एक नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम और एक इनका नाम, मतलब मेरे दिमाग में इनके नाम चाहे ना वो आगे पीछे हो जाते हैं। बोला ये सुनते हैं ट्रैक, उस ट्रैक उस बारे की आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डैप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च बाज, आप सुन रहे हैं सलोराज के समोसी के साथ साथ। प्रोग्राम में कुछ चंद ट्रैक्स शामिल किए जा रहे हैं क्योंकि दिन भी जो मंडे का मंडे वाले इसमें जो है मेरी कोशिश रहती है कि इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रैक शेयर किए जाएँ क्योंकि ताकि आपका पूरा वीक जो है वो अच्छे से अच्छा हम गुजारने के लिए बना सकें। यू नो कि वीकेंड के बाद दोबारा से रूटीन पर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं प्रोग्राम में जो वो ट्रैक ही प्ले करूँ। सवाल ये सुनते हैं स्ट्राइकर्स, स्ट्राइकर्स पर है कि आपसे मुलाकात हो स्टेडियम 97.1 एफएम एंड डैप। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फज़ल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च बाज़, आप सुन रहे हैं सदर आज की सवल उसी के साथ साथ अभी जो है वो प्रोग्राम में मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ आके गपशप भी लगा ली जाए। मुझ तक जो है ना बड़े खूबसूरत सा मैसेज पहुंचाया गया, और मैसेज कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो उन्होंने किया कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं आप कैसी हैं? अच्छा, बात एक छोटी सी शामिल करवाई है, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी राय उस पर मांगी है कि अकेले रहने के होफ से बेकदरों के साथ ना बंधे रहना। अब ये बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर इसकी इंफॉर्मेशन देखी जाए तो काफ़ी मज़े की होगी, काफ़ी डीप बातें होंगी। सिर्फ उस खौफ की वजह से कि आप अकेले रह जाएंगे, ऐसे लोगों के साथ ना जुड़ें, ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो आपके लिए नुकसान दे जो है वो साबित हो, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके लिए गलत किरदार वाले हों, जो गलत किरदार वाले हों, जो आपके लिए ज़हनी सुकून, आपका ज़हनी सुकून छीनने वाले हों। सो इस बात में एक गहराई जो है ना वो नफ्सियाती हकीकत है कि तभी इंसान तन्हाई के खौफ की वजह से गलत रिश्ते, दोस्ती या तलक बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन आर्जी तन्हाई जो है ना अक्सर ऐसे तल्लुक से बेहतर होती है जो आपकी इज्जत भी करती है, आपको सुकून भी देती है, और आपको उस इंसान से बात करके अच्छा भी लगता है। वो कहते हैं ना कि इसीलिए कहते हैं कि कम ही लोगों से मिलना चाहिए, कम कम ही बात करनी चाहिए। रोज मिलने से, रोज बात करने से गिले शिकवे बढ़ते हैं। अकेले रह जाना गलत लोगों के साथ रहने से काफी ज्यादा बेहतर है। तन्हाई से मत घबराएं, क्योंकि कहीं कोई साथ छोड़ ना दे, इस बात को बिल्कुल भी मत सोचें। अपने म्यार और अपनी इज्जत नफ्स को इतना कम ना करें कि सिर्फ जो है वो साथ मिलने के लिए गलत लोगों को बर्दाश्त करना पड़े आप लोगों को। इसलिए कहते हैं कि अकेले रहने के होप से बेकदरों के हाथों ना बंधे रहना, बेकदरों के साथ ना बंधे रहना। हम ये सोचते रहते हैं कि अगर ये शख्स मेरी ज़िंदगी से निकल गया तो शायद मैं अकेली हो जाऊँ, तो लोग क्या कहेंगे, शायद ये बदल जाए। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभार लोग जो हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक बार जिससे धोखा खा लेना उसको दोबारा चांस नहीं देना चाहिए। हज़रत अली का भी फरमाना कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी है। बस यही सोच के कम से कम कोई मेरे साथ तो है, ये सोच कर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, बेकदरों के साथ नहीं बंधा जा सकता, लेकिन सिर्फ अकेले रहने के खौफ की वजह से किसी बेकदरे इंसान के साथ, झूठे के साथ, इज्जत ना करने वाले इंसान के साथ अगर आप रह रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। हाँ, इंसान का दिल बड़ा नॉर्मल होता है, बड़ा ही कमज़ोर सा होता है, कि अटैचमेंट जो है ना अगर किसी से हो जाए तो फिर उस अटैचमेंट को ख़त्म करने में बहुत टाइम लग जाता है। और मैंने कहीं सुना था कि प्यार से ज़्यादा जो बुरी चीज़ है ना वो आदत है, और आदत अगर किसी की लग जाए तो वो चीज़ बहुत कम ख़त्म होती है, बहुत मेरे ख्याल से वो ख़त्म होती ही नहीं है, बट एक टाइम आता है कि वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो जिन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, जो रातें, जो वक्त अकेले काटने

होते हैं ना वो मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप किसी के साथ सिर्फ आर्जी तौर पे ही रहें, ना कि उनके साथ रोज का मिलना मिलाना ये वाला सीन जो है ना इसको ख़त्म कर दें। बस यही ना सोचते रहें कि मुझे हर वक्त किसी का साथ जो है वो ज़रूरी है, या किसी के साथ मुझे हर वक्त किसी के साथ रहना ही रहना है, मुझे सही लोगों का साथ चाहिए। हाँ, सही लोगों का साथ आपको चाहिए। एक खूबसूरत फ़र्क ये है कि अकेला होना और तन्हा होना एक चीज़ नहीं। आप कुछ वक्त अकेले रहकर खुद को समझ सकते हैं, तय कर सकते हैं कि अपनी हदों को, अपनी इज्जत नफ्स को वापस हासिल कर सकते हैं। और कहते हैं कि मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़े तो हमेशा इज्जत को चुने। तो फिर बेहतरीन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी में जगह बनाएं। हम लोग जो है ना बेकदरों के हाथ बंधे रहते हैं, तो बेकदरों के साथ बंधे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। जब तक हम खुद नहीं ना चाहेंगे तब तक हम अपनी ज़िंदगी में उस तरह की चेंजिंग नहीं ला पाएंगे जिस तरह की हम चाहते हैं। हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारा दिमाग जो है ना वो हमारा साथ नहीं देता। दिल साथ देता है तो दिमाग साथ नहीं देता, दिमाग साथ देता है तो दिल साथ नहीं देता, ये सीन चल रहा है। वो कहते हैं ना कभी भी किसी एक इंसान से बचने के लिए किसी दूसरे इंसान का सहारा ना लेते, ना इसे बचने के लिए गलत ताल्लुकात ना रखें, गलत इंसान से ताल्लुक ना रखें। कभी इंसान को साथ की ज़रूरत इतनी महसूस होती है ना कि वो देखना छोड़ देता है कि उसे उसके साथ देने वाला शख्स कैसा है कैसा नहीं, बस ये सोच के साथ चल पड़ता है कि चलो कोई साथ तो है ना। लेकिन हर साथ अच्छा साथ नहीं होता, इस चीज़ पे एग्री हो जाए, इस चीज़ को मान लीजिए। जो शख्स आपको मुसलसल बेसकून, बेइज्जत या ज़हनी तौर पर कमज़ोर करे सिर्फ उसी लिए उसके साथ रहना कि मैं अकेला ना हो जाऊँ, ये चीज़ जो है ना गलत है, दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त सौदा नहीं है। आप सौदा कुछ इस तरह से करें कि अगले को आपकी दाद से किसी भी तरह का फ़र्क ना पड़े, कोई लालच ना हो। और प्यार वगैरह कुछ भी नहीं होता, सीरियसली आपको एक बात बताती हूँ, प्यार वगैरह कुछ भी नहीं होता, इज्जत होती है, हर रिश्ते में इज्जत होती है। इज्जत ख़त्म हो जाए तो सारी चीज़ें ख़त्म। हम कहते हैं ना कि हमें आपसे बहुत प्यार है या हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं, प्यार कुछ भी नहीं होता। इज्जत जब तक रिश्ते में है तब तक वो प्यार भी, वो रिश्ता भी बरकरार है। लेकिन अकेले रहना हमेशा नुकसान देह नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ मरहले ऐसे आते हैं जहाँ इंसान को लोगों से ज़्यादा खुद के साथ जो है वक्त गुजारना अच्छा लगता है, और एक टाइम में ऐसा सीन हो भी जाता है। सो कोशिश ये करें कि गलत लोगों से दूरी रखें, इंसान को अपनी गलतियाँ समझने का मौका आप खुद अपने आप को दें कि आप किस इंसान के साथ साथ चल कर उसके साथ खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद के साथ गलत कर रहे हैं। खुद एतमादी पैदा करती हैं ऐसी चीज़ें, और ये सिखाती हैं कि सुकून किसी एक इंसान का मोहताज नहीं होता, किसी एक शख्स से मतलब सुकून का कोई वास्ता नहीं है। आप खुद को बेहतर खुश रख सकते हैं। हाथ तलक निभाना ज़रूरी नहीं है, रिश्ता, दोस्ती या मोहब्बत सिर्फ इसीलिए नहीं निभाई जाती कि वो पुरानी है, नहीं। अगर किसी ताल्लुक में बार बार अख्तलाफात, ज़हनी अज़ियत आपको मिली है तो आपको फ़ौरन से साइड पे हट जाना चाहिए। और सच्चा रिश्ता वही होता है, सच्ची दोस्ती भी वही होती है जो कभी कभार आपसे बात हो, और उस कभी कभार में बात होते हुए भी ऐसा फील हो कि अभी कल बात हुई थी, अभी 10 मिनट पहले जो है मुलाकात हुई थी। सो अपनी इज्जत नफ्स को जो है ना अकेला रहने के खौफ से जो है वो ज़ाया मत करें, बस इस चीज़ का ख्याल रखें। बस अभी जो है वो गपशप का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। प्रोग्राम में मैंने अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा सा चेंज कर लिया था, मैंने सोचा कि क्यों ना बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडी फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज़, आप सुन रहे हैं सलोराज की सुसी के साथ साथ प्रोग्राम में मेरा आपका साथ आया था ठीक ठीक 2 बजे तक। अभी एक फरमाइश आई थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा आपको अपनी आवाज़ भी सुना दीजिए ताकि आप ये ना बोले कि सलोराज पता नहीं कहाँ चली गई हैं। अच्छा, इस गाने को सुनती हूँ ना तो मुझे अपने बहुत से गुजरे पल याद आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब आप किसी इंसान के साथ मिलते हैं ना, मतलब जरूरी नहीं है कोई मतलब लड़का ही हो, लड़कियाँ भी हो सकती हैं, जब आप किसी के साथ मिलते हैं ना तो उस जगह पे उस वक्त आप जो गाना सुनते हैं और वो जो जगह होती है उसके ऊपर, उस जगह पे दोबारा जाओ ना तो वो सीन याद आता है, वो मोमेंट याद आता है। और अगर आप वो वाला ट्रैक कभी सुन लो तो जो आपने उस टाइम पे सुना हो, तो फिर आपको वो वाला पल याद आता है कितना अच्छा था, कितना खूबसूरत था। वक्त हमेशा खूबसूरत होता है, बस उसको खूबसूरत हमें बनाना पड़ता है। वो फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि हर ट्रैक के पीछे कोई ना कोई कहानी भी छुपी होती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेमस होने के लिए ट्रैक गाए जाते हैं, कुछ लोगों के पीछे बहुत ऐसी कहानियाँ छुपी होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, हमें मालूम नहीं होता। ये ट्रैक जो है ना रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी से लिया है, और बड़े मजे का ये ट्रैक है। इसी मूवी का एक ट्रैक मुझे बड़ा पसंद है और मेरी कोशिश ये है कि मैं उसको भी प्रोग्राम में अपनी मर्जी का भी प्ले कर देती हूँ।

सवाल अभी जो है प्रोग्राम में मेरा आपके दरमियान है, वक्त भी जो है वो कमर्शियल ब्रेक का होने वाला है, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है। वो कहते हैं ना कि जब आप क्या कहते हैं, हाँ कहते हैं ना कि जब आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं लग जाना तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसमें कभी आप कुछ खाना खाने कहीं पे भी गए हैं और जब खाना खा, आपने शायद ये नोट भी किया होगा, जब आप खाना खाने का मज़ा नहीं लग जाता आपको तो खाना ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जब मुझे आपके साथ गपशप लगाने का मज़ा नहीं लग जाता तो टाइम जो है बीच में कमर्शियल ब्रेक आ जाता है, ये टाइम ख़त्म हो जाता है शो का ही, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो वक्त से चलती है, पेट्रोल से नहीं।

0: तो मैं जो हूँ ना अपने 2 घंटे का टाइम कुछ इस तरह से लेके आती हूँ कि आपके साथ गपशप भी की जाए और आपकी फरमाइशों को भी पूरा किया जाए। कुछ सलूराज का ट्रैक इतना प्रोग्राम इतना मज़े का होता है ना कि लोग जो है वो ट्रैक भी प्ले करवाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैक मैं प्ले काफ़ी अच्छे करती हूँ। और मज़े की बात यह कि मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी कि जब मैं अपना पहला प्रोग्राम का आगाज़ करते वक्त एक ट्रैक शामिल करती हूँ ना, फिर उसके बाद मुझे उसी तरह के ट्रैक की फरमाइश आती है। और इस मूवी में जो है ना वो आलिया भट्ट ने क्या साड़ियाँ पहनी है यार, आहा, मतलब बहुत मज़े की ड्रेसिंग की है। सवाल म्यूजिक के साथ साथ प्रोग्राम में एक और छोटे से ट्रैक को शामिल करते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। इसी मूवी का एक ट्रैक है छोटा सा, उसको भी आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। फिर इसी के उस पार मेरे आपके दरमियान हायल होगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कमर्शियल ब्रेक के बाद ही आपसे मुलाकात करेंगे।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।
0: और आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, इस ट्रैक के पर रहेगी मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: You are staying. We are playing. Fazan 97.1 FM.

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सोलसी के साथ प्रोग्राम में छोटी कमर्शियल ब्रेक आती है, कमर्शियल ब्रेक उस पर ही आपसे मुलाकात। अभी जो है ना हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है वो है म्यूजिक का, तो मेरी कोशिश है कि आपकी जो फरमाइश है ना ढेरों ढेरों मेरे पास, मैं उनको पूरा कर दूँ। और साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। फिर ग्राम में आपकी फरमाइशों को मैं शामिल करूंगी, लेकिन हौसला रखिएगा, ट्यून करके रखिएगा फजल 7.1 एफएम को।
1: तो जी के की करूं
0: मेरा आपका साथ रहेगा, ठीक हो ठीक 2 बजे तक। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

0: जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडी फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज़, आप सुन रहे हैं सरराज की जुलूसी के साथ साथ। अभी मेरे पास एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मौजूद है और वो आवाज़ है जी आतिफ असलम की आवाज़ है, आतिफ असलम नहीं सॉरी अली जफर की आवाज़ है। अली जफर की एंड लड़की का नाम मुझे सही से आ नहीं रहा रीड करने, गुल पंद्रह कुछ इस तरह लिखा हुआ है सवाल। खैर वो यही सुनते स्ट्रैकर्स स्ट्रैकर्स वाले की आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड दैप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।
1: जब हमारा जुबान मिलाएगा

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समाज को रेडियो 107.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, और उसी के साथ साथ अब वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अब क्यों ना आती अली जफर की आवाज़ को शामिल कर दिया, तो जाते जाते आसिफ असलम की एक और आवाज़ को शामिल कर दिए थे। सो कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

जिंदगी भी एक खूबसूरत म्यूजिक ट्रैक की तरह, इसमें खुशियों के सुर भी हैं, इंतजार की लय भी है, उम्मीद के बोल भी हैं और कभी कभी खामोशी की धुन भी। लेकिन अगर इंसान के दिल में हौसला हो तो जिंदगी का हर सुर खूबसूरत महसूस होने लगता है। और वैसे भी मौसीकी एक ऐसी ज़बान है जिसे समझने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, जज्बात खुद रास्ता बना लेते हैं। तो अगर आप इस वक्त सफ़र में हैं, घर में हैं, काम में मसरूफ़ हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं या शायद तन्हाई में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ख़ुद को चंद लम्हों के लिए हर फिक्र से आज़ाद कर दीजिए। चाहे की चुस्की हो, मौसम की ठंडी हवा हो या मसरूफ़ दिन के चंद पुरसकून लम्हे, इन्हें और भी यादगार बनाते हैं खूबसूरत नगमे। और अब वक्त है हम बातों की दुनिया से निकल कर मौसीकी की दुनिया में दाखिल हों। तैयार हो जाइए खूबसूरत धुनों, दिलकश आवाज़ों और उन गीतों के लिए जो आपके दिल की धड़कनों के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पसंदीदा सॉन्ग सेगमेंट की तरफ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फ़ज़ा पर, जहां धुनें भी अपनी लगती हैं और आवाज़ें भी अपनी लगती हैं। सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM।

0: अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें आप कभी गर्दिश अय्याम की नज़र ना हो, वरना आप पर पत्थर फेंकने वालों में सबसे आगे वही लोग होंगे जिनके साथ आपने सबसे ज़्यादा भलाई की होगी, और ये लम्हा सबसे ज़्यादा अजियतनाक होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कमज़र्फ लोगों के साथ कभी भलाई का मामला करें ही ना।
1: भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं।
0: जो लोग कहते हैं ना आई कैन फील योर पेन, बिल्कुल गलत कहते हैं। आई एम नॉट एग्री विद देम, क्योंकि अपनी तकलीफ तो अपनी ही होती है और इस तकलीफ को तो कोई मर कर भी महसूस नहीं कर सकता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं।

समीर रेडियो फसा कुछ ऐसे सॉन्ग जो आपकी हर्ट बीट को तेज कर देंगे, सुनते हैं, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए फसा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07-59-150-669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2

एक खूबसूरत नगमा आपने सुना रेडियो फजा एफ एम 97.1 पर। और एक बार फिर मैं आपका मेज़बान आप सबको दिल की गहराइयों से अपने प्रोग्राम आफ्टरनून मिक्स में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, सफ़र में होंगे, दफ्तर में होंगे या घर में अपने अहले खाना के साथ या शायद चाय या कप हाथ में लिए हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे। आपकी ये मोहब्बत ही हमारी असल ताकत है और यही ताल्लुक हमें हर रोज़ आप तक पहुँचने का हौसला देता है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर नई सुबह इंसान को एक नया मौका देती है। कल अगर कोई गलती हुई, कोई फैसला दुरुस्त ना हो सका, कोई ख्वाब अधूरा रह गया या किसी बात पर दिल टूट गया, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कहानी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी का हुसन यही है कि हर तुलू आफ्ताब के साथ अल्लाह ताला हमें एक नया सफ़ा अता फरमाते हैं जिस पर हम अपनी किस्मत को मेहनत, इखलास और अच्छे किरदार से दोबारा लिख सकते हैं। अक्सर हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें अपनी नेमतें दिखाई ही नहीं देती। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप सेहतमंद हैं, अपने पैरों पर चल सकते हैं, अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, अपने कानों से अपनी प्यारों की आवाज़ सुन सकते हैं, तो यकीन जानिए आप दुनिया के लाखों लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हैं। इंसान की फितरत है, जो उसके पास है उसकी कदर कम करता है और जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। हालांकि सुकून ख्वाहिशों के पूरा होने से नहीं बल्कि शुक्र अदा करने से मिलता है। मेरे नौजवान दोस्तों, अगर आज आप अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि हालात आपके मुताबिक नहीं, वसाइल कम है या रास्ते बंद नजर आते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं उनमें से अक्सर ने अपनी कामयाबी का सफर सिफर से शुरू किया था, जीरो से शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनाया बल्कि अपनी ताकत बना लिया। वो गिरे भी, नाकाम भी हुए, लोगों ने उन पर तनकीद भी की, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया।

आज जब आप अपने कामों में वापस जाएं तो एक छोटा सा अहद अपने आप से ज़रूर कीजिए कि जहां भी होंगे आसानियां बांटेंगे, नफ़रत नहीं मोहब्बत फैलाएंगे, मायूसी नहीं उम्मीद देंगे और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे घरों में मोहब्बत सुकून और बरकत अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमाए, बेरोज़गारों को बेहतरीन हलाल रोज़गार अता फरमाए, हमारे वालिदैन की हिफाजत फरमाए और हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। समय अब इजाज़त का वक्त करीब आ पहुँचा, अगले चंद लम्हों में मैं आपसे रुख्सत लूँगा, लेकिन रुख्सत होने से पहले एक खूबसूरत नगमा आपकी नज़र करते हैं, इस नगमे से लुत्फ़ानंदोज़ हों, इसके बाद मैं आपसे बाकायदा इजाज़त चाहूँगा, कहीं मत जाइएगा। रेडियो फ़ज़ा FM 97.1 सुनते रहिए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट और आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुशामदे जी हैं उसद, बिस्मिल्लाह पर खैर राग ले, अस्ता लविस्ता, आओ गाना संगे दिल तराशा। उम्मीदवासी का जो जहाँ जिस हाल में होगा, खुशबाश होगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल होगा, बल्कि उम्मीद नहीं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि सभी पर अल्लाह पाक का खास करम होगा और सभी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीन बनाने की तगदों में मशगूल होंगे, और जो लोग नहीं हैं उनको अब हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वक्त ऐसा है कि कामयाब वही होगा जो मेहनत करेगा, जो आप जैसा बंदा या मेरे जैसे बंदा आराम सुकून से बैठा रहेगा और इस इंतज़ार में रहेगा कि कब कामयाब होंगे, तो बस फिर हो गए कामयाब। ओवल जी, उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं आज के प्रोग्राम में भी, जिसका नाम है ड्राइव जोन, और बंदा ने चीज़ उस्मान खान फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से। कौन कहां से किस तरह मुझे सुन रहे हैं ये आपने मुझे बताना है, और तरीकाकार वही पुराना है, लेकिन उन तमाम तर लोगों के लिए नया है जिन्होंने आज पहली बार फजा 97.1 एफएम को ट्यून प्लस चूज किया। वाले आप ड्राइव कर रहे हैं तो बी सेफ, बी केयरफुल, और फजा डैप पर मुझे ट्यून कर लीजिएगा, आपको मेरा साथ रहेगा ठीक दो घंटे का। इन दो घंटों करेंगे को करेंगे को दो घंटों को करेंगे मजीद खूबसूरत, और इनको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ साथ आपका रहना बेहद ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में चलेंगी खूब मौज मस्ती, हंगामा, हल्ला गुल्ला और खूबसूरत सी प्लेलिस्ट, इसके साथ साथ आपके पसंदीदा वो तमाम द ट्रैक्स जो आप सुनना चाहते हैं लेकिन वक्त की मुनासिबत से मौका नहीं मिल पा रहा आपको, सो लीजिए आम हाजिर। जल्दी से मोबाइल फ़ोन का डायल पैड ओपन कर लीजिए और नंबर नोट कर लीजिए जिस नंबर पे आपने मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होना है। मोबाइल फ़ोन का डायल पैड ओपन कीजिए और नंबर को नोट करिएगा, द नंबर इज 0115710091। आई अगेन रिपीट दिस नंबर इज वेरी स्लोली स्लोली 0115710091। इस नंबर को नोट कीजिए, सेव कीजिए और फिर व्हाट्सएप पर जाकर कोई भी पसंदीदा गजल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज दीजिएगा। हवा के दुश्मन लहराता गुनगुनाता सनसनाता हुआ आपका खूबसूरत सा पैगाम जैसे मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जागेगा, हजूर सुनते हुए तमाम दर खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। सो आर यू वेटिंग? रेडियो की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही, सिग्नल का इशू है, नॉटिंघम से आसपास हैं, दूर हैं, जहां पर भी हैं, लेकिन अगर ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ बड़े ऑप्शंस हैं। सेकंड ऑप्शन ये है जनाब, आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मुझे सुन सकते हैं, उसके लिए आपने गूगल पर जाना है, वहां पर जाकर लिखना है radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और मुझे लाइव सुन लीजिएगा। एप्लीकेशन चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर दोनों जगहों पे अवेलेबल है रेडियो फजा 97.1 एफएम। ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप फजा डैप पर भी मुझे ट्यून कर सकते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत ही एक झलकते भड़कते हुए ट्रैक के साथ, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा, लुट ले गया। इस ट्रैक के उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात, डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

हेलो जी, वंस अगेन वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लुट ले गया खूबसूरत सा ट्रैक को जरूर एंजॉय कर रहे थे, और ये उन तमाम तर लोगों के लिए था जो इस वक्त ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं। तो आप भी अगर ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके नाम आपकी मर्जी का कोई भी खूबसूरत सा गाना कर सकता हूं। बस अपने उस फरमाइश के साथ उस सिंगर का नाम ज़रूर लिखिएगा जिस सिंगर की आवाज़ में आप गाना सुनना चाहते हैं, और प्रोग्राम में जब आप शामिल होंगे तो फिर हम आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे। वो तमाम तर मैसेजेस जो आप मुझ तक पहुंचाएंगे हवा के दोष पर, जब मुझ तक पहुंचेंगे सुनती हुई तमाम तर समातों की नज़र भी करेंगे उनको। और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि कोशिश करके जब आप मैसेज करें तो उसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करके मैसेज करिएगा, लंबा मैं आप पे कर लूँगा। फिलहाल मेरे पास एक और खूबसूरत सा ट्रैक है और कोक स्टूडियो से लिया गया ये खूबसूरत सा ट्रैक, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। अली सेठी और सई गिल की आवाज़ है और सई गिल कमाल की आवाज़ रखते हैं। सो इस आवाज़ के उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात कोक स्टूडियो सीजन 14 पर। सूडी सॉन्ग आपको ज़रूर पसंद आने वाला है, और ये आपके लिए नहीं है, आपके साथ वाली सीट पर जो बैठे हैं उनके लिए है। उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छा लगेगा। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार, रहिएगा मेरे साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड डैब, आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम ड्राइव टाइम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Bigger, and better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम एंड टैप प्रोग्राम कॉल ड्राइव जोन। मैं अपने तमाम आने वाले नए लिसनर्स को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ फजा 97.1 एफएम की तरफ से, आल्सो वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब हरियत से होंगे, खुशपाश होंगे, राजी बाजी होंगे, हंसते खेलते होंगे और खुश होंगे।

हमेशा की तरह आज भी हम कुछ दिलचस्प मालूमात शेयर कर रहे थे और शेयर करेंगे, और इसके अलावा आपसे कुछ कम्युनिकेशन भी होगी, और इसके अलावा आपके पसंद के सॉन्ग्स भी चलाए जाएंगे और आपसे गपशप भी की जाएगी। सो जहाँ जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, एक दम से बस एक हाथ रख के अपने दिल पे कोई ऐसी बात सोचिए जो आपको दिल को ऐसा लगे कि आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, या किसी को कोई बर्थडे विश करना है, एनिवर्सरी विश करनी है, या अपनी पसंद का गाना लगाना है, या किसी को डेडिकेट करना है, अपने फ्रेंड को या स्पेशल वन पर्सन को। अपना मैसेज ज़रूर भेजिए। भेजने का तरीका वही पुराना, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए, 0115710097। आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप हमें, अगर जहां कहीं भी आपको हमारी आवाज़ नहीं ठीक तरीके से पहुंच रही, तो आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है रेडियो फजा 97.1 FM, या एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। जस्ट आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM, और पर्पल बैकग्राउंड के में ब्लू सॉरी रेड, ये मुझे क्या हो गया, हैर जी, गोल्डन कलर का माइक आएगा, नीचे रेडियो फजा लिखा होगा, आपने डाउनलोड कर लेना है और जस्ट वन क्लिप पे आप हमें सुन सकते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप हमें एप्लीकेशन के थ्रू सुन सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट हमारी जो वेबसाइट है वहां से भी सुन सकते हैं। वेबसाइट का नाम है radiofaza.co.uk। एक तरीका और भी है जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनके लिए है, और आपने डैब पे जाके सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM, वहां से भी आप हमें सुन सकते हैं।

अच्छा दोस्तों, आज का मौजू भी बहुत एक मैं कहता हूँ कि सिंपल सा है आपकी नज़र में, पर एक बहुत बड़ी सी बात, और हर एक इंसान के दिल में ऐसी बात ज़रूर आती होगी, और जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उनके भी दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी कि जब भी आप सोते हैं रात को, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है। बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि कल को किसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कल को मैं ये काम करूँगा, उठूँगा सुबह, ये शिफ्ट पर जाना है, मैंने फलां काम करना है, फलां को मैसेज करना है, या कुछ के दिमाग में कोई ऑफिस की वर्किंग चल रही होती है, या कुछ के दिमाग में ऐसा घूमने का कोई चल रहा होता है कि मैंने फलां घूमने जाना है या फलां को मैसेज करना है, ये करना है वो करना है। सो आपसे हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा होता है हमेशा, क्या आप भी ये सोचते हैं या सिर्फ हम भी ये सोचते हैं। और हमेशा अपने इरादे मजबूत रखने चाहिए, क्योंकि अगर इंसान सोचेगा नहीं तो करेगा कैसे। और हमेशा जो सोचते हैं उसके लिए कोशिश भी करें, सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं होता। और ये हर एक के साथ होता है कि जब भी हम सोने के हो जाते हैं तो दिमाग अपने आपके माइंड के साथ कोई, मैं कहता हूँ आपके जहन के साथ अलग सी मीटिंग स्टार्ट कर देता है कि कुछ लोगों के जहन में अपनी जॉब के बारे में आ रहे होते हैं, कुछ में बिजनेस के बारे में, कुछ ड्राइवर जो हजरात हैं, ड्राइविंग जोन हैं, तो स्पेशली मैं ड्राइवर हजरात को भी मुखातब करता हूँ। तो खैर ड्राइवर भी इसी तरह होते हैं कि उनका भी कोई ऐसा कोई प्रीवियस डे का या उस दिन का जो भी उनके साथ कोई ऐसी स्पेशल कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो, या किसी ऐसे स्पेशल उस उन्होंने पैसेंजर को बिठाया हो जो कैब चलाते हैं, या कोई भी ऐसी रास्ते में कोई ऐसी चीज़ देखी हो जो रात को उनके माइंड में दोबारा चलती है। इसके अलावा आप फैमिली को भी याद करते हैं, फ्रेंड्स को भी याद करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, और इसके अलावा मैसेजेस भी याद करते हैं कि सुबह उठ के गुड मॉर्निंग ज़रूर आना है। और हमेशा कहता हूँ कि हमेशा अपना माइंड कूल रख के और माइंड फ्रेश रख के सोया करें, और सोने से पहले कोशिश किया करें कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी कर लिया करें जो आपके माइंड को फ्रेश करे, ताकि आपका माइंड स्ट्रेसफुल फील ना करे और इजीली सो जाए, ना कि आपके साथ मीटिंग करने लग पड़े कि दस हाँ मनु हूँ तू फलाना काम किस तरह किया था, फलाना काम किस तरह करना है, क्यों पंजाबी पाई हो तुसा भी दसना है मनु कि तुहाडे माइंड च की चल रहा होंदा है।

और वैसे भी मैंने खुद अपने अगर मैं बात करूँ तो मैंने नोट किया है कि जब मुझे कोई दिन में जो भी मैं डेली वर्किंग जो भी करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जो भी करता हूँ, तो उस वक्त मुझे कोई भी बात ऐसी जहन में नहीं आ रही होती। तो जब भी मैं रात को जब सोने से पहले जब मतलब सोने की तैयारी में होता हूँ तो माइंड में कुछ बातें चल रही होती हैं कि किसने मुझे दिन में

स्पेशल होते हैं, और कुछ के लिए अपने घर वाले स्पेशल होते हैं, और कुछ के लिए जस्ट वो रिंग स्पेशल होती है जो सुबह सुबह उनको उठाती है। कुछ लोगों के माइंड में यही चल रहा होता है कि मैंने अलार्म लगाया कि नहीं लगाया। और वैसे भी कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ये बात मेरे माइंड में कहाँ से आई, क्यों आई। इसका जवाब आज तक मुझे भी नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि, और बताने का तरीका व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि आपके माइंड का जवाब कभी मिला है कि आपका माइंड ऐसा क्यों सोचता है। और वैसे भी मैं आज का क्वेश्चन भी आपको बताता चलूं कि आप बताइएगा मुझे और मैसेज कोशिश कीजिएगा और अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखिएगा। और आज का सवाल है कि जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है, ज़रूर बताइएगा। अपना नाम और अपने शहर का नाम हमें लाजमी भेजिएगा। चलें आपके जहन में ज़्यादा बोझ नहीं डालते और आपको बताते चलें कि हम ऑप्शन भी रखते होते हैं, और जो रेगुलर लिसनर हैं उनको पता है कि हम ऑप्शन भी रखते होते हैं। आपका मुझे पता है कि आज आपका पता नहीं किन किसका दिन किस तरह गुजरा होगा, किसका अच्छा गुजरा है, किसका बुरा गुजरा है। तो हमारी कोशिश होती है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए, और आरजे की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि आपके लिसनर आपका साथ देते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और गुड वाइब होती है ये। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि हमारा सफ़र वहीं से शुरू होता है जहाँ आपके चेहरे से मुस्कुराहट आती है। खैर जी, आपसे बताता चलूँ कि आपके अगले दिन के बारे में सोचते हैं, वही बात जो मैं मसलन रेगुलर बता रहा होता हूँ आपके दिन में वही आ रहा होगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगले दिन क्या करूँगा, कुछ लोग अपनी जॉब के वाले से सोचते हैं, कुछ पैसा बनाने के वाले से भी सोचते हैं, और इसके अलावा कुछ फैमिलीज का सोचते हैं। आपने बताना है कि आप इनमें से कौन सी चीज़ का सोचते हैं, लाजमी बताइएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 01157100971।

और वैसे भी अगर मैं सोचता हूँ कि अगर अलार्म की बात की तो मैं मेरे जहन में बात आई, वैसे तो मैं आपके लिए एक प्यारा सा गाना भी ढूंढ रहा हूँ साथ साथ, और हम लगाएंगे भी, और इसको हम पहले ही प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर लेता हूँ। साथ साथ आपसे बातें भी चलती रहेंगी जी, और आपके मैसेजेस भी साथ साथ रिसीव हो रहे हैं और कुछ के होंगे मुझे लग रहा है कि, और यही हमारे लिए खुशी की बात है कि आप हमें अपना साथ होने का एहसास देते हैं और हमें अपने कीमती वक्त में वक्त निकाल के हमें मैसेजेस करते हैं।

हर जी इंजॉय करिए ये प्यारा सा पंजाबी सॉन्ग, और इसके बाद हाजिर होते हैं और आपके आंसर्स भी देखेंगे और ऑन एयर करेंगे और अपना आपका प्यारा सा नाम भी मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर किसी की कोई विश है तो जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए और अपना विश और डेडिकेशन बताइए। इसके अलावा आज मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पसंद का सॉन्ग कौन सा है और कौन सी लैंग्वेज में पसंद है। जैसा कि मुझे अरबिक समझ नहीं आती पर मुझे अरबिक म्यूज़िक पसंद है, इसी तरह अगर आपको कोई ऐसा म्यूज़िक पसंद है जो जस्ट म्यूज़िक के लिए पसंद है तो वो भी बताइएगा ज़रूर। So enjoy the music.

0: commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mundi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फदर 97.1 एफएम एंड डैब प्रोग्राम का ड्राइव जोन। मैं अपने तमाम नए आने वाले लिसनर्स को वेलकम कहता हूँ फजर 97.1 एफएम की तरफ से। हर जी बात हो रही थी उन तमाम ख्यालात की जो हमें तंग करते हैं रात को। हर कुछ को तो तंग करते हैं, कुछ को परेशान करते हैं और कुछ को खुश भी करते हैं, ये बात नहीं है, एक बात तो नहीं होती। और वैसे भी मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा था, मुझे अच्छा रिस्पांस आया, और आप भी मेरी तरह ही थिंकिंग करते हैं। कुछ लोग कारोबार की थिंकिंग कर रहे थे और कुछ लोग जॉब की थिंकिंग कर रहे थे, कुछ लोग डेली वर्किंग की थिंकिंग कर रहे थे। आपके नाम और आपके मैसेजेस को शेयर करूँगा, मैं अगले हिस्से में शामिल करूँ, क्योंकि आपसे गपशप भी करनी होती है। अगर मैं मैसेज शामिल करना पढ़ूँ तो आपसे गपशप नहीं होती, और इसके अलावा गाने भी आपके लिए प्ले करने होते हैं, और जो आप डिमांड करते हैं हमें, और आपकी ख्वाहिश को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है।

हाँ जी, आपने साथ साथ मैसेजेस में भी बताना है और साथ साथ हमारे साथ रहना है और अपने होने का एहसास ज़रूर देना है, और देने का तरीका वही पुराना है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में जो बात आई है अभी तक, जो मैं सोच रहा था जिस तरह के आप सोच रहे हैं, वो ये है कि रात को मुझे, मेरी नज़र में ऐसा लगता है मुझे कि अगर रात को आपको ख्याल आते हैं तो दिन को नहीं आते, या दिन को आप पूरा वो काम करते हैं जो रात को आपको सोने से पहले या सोते हुए कोई ख्वाब या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होती है जो अपने माइंड के साथ आप बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा सिर्फ उस वक्त होता है, क्योंकि दिन को बहुत सारे लोग होते हैं, इसके अलावा आपके लगता है कि आप नॉइज़ होती है, बहुत सारी वर्क होता है, पीपल होते हैं, इसके अलावा जॉब की भी स्ट्रेस होता है, तो बंदा रात को अकेला होता है, अपने साथ बातें कर सकता है। और इसके अलावा वैसे भी मैं कहता हूँ कि रात को इंसान होता है और उसकी याद होती है और उसका खुद अपना आप होता है। और लगता है मुझे कि शायद इसी वजह से हम अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या मैं अपनी लाइफ में सही जा रहा हूँ, क्या ये वाकई हम खुश हो, या क्या ये मेरा करियर चूज करना ठीक था, इसके अलावा मैं अपनी फैमिली के बारे में भी कैसा सोचता हूँ, और इसके अलावा मेरा फ्यूचर कैसा होगा और आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये मुझे नहीं पता, ये आपको ही पता है। सही कहा ना? और वैसे भी मेरी नज़र में जो सबसे मुझे मुश्किल फ़ैसला लगता है वो ये लगता है, और अक्सर मैं सोचता भी हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं मल्टीटास्क करूँ और मैं हर एक काम कोशिश करता हूँ कि करूँ, पर ज़िंदगी का सफ़र ऐसा है और ज़िंदगी की मसरूफियात ऐसी हैं कि कुछ हो जाते हैं कामयाब और कुछ नहीं होते। बस आपको मेहनत करनी चाहिए और हमेशा कामयाबी के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना होता है, लेकिन लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब होते हैं। और हमेशा एक कहते हैं कि एक ही सिमत में आप अगर चलें तो आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाती है, और कोशिश किया करें कि एट अ टाइम, हमेशा कुछ लोग कहते हैं कि एक ही आपका माइंडसेट होना चाहिए, मेरे लिहाज से कोई ना कोई बैकअप ज़रूर होना चाहिए। आपके लिहाज से क्या होना चाहिए ये ज़रूर बताइएगा।

और बात कामयाबी की हो रही थी तो साथ साथ मैं किसी सियाने की भी बात करता चलूँ। किसी सियाने ने ये कहा है कि कभी कभी हार ना मानना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी मंतजर है। और ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है और आपके लिए सोचने वाली बात है कि अगर आप किसी भी चीज़ पे कोई भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो मेहनत आपको रहेगा जाए, या हो सकता है कि आप उसको अचीव कर ना सकें, और या हो सकता है कि उसको अचीव करने में कुछ देर लगे, पर आपको चाहिए कि हमेशा उस चीज़ पर ही रहें,

और हमेशा आपको ये चाहिए कि हमेशा मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा मुश्किलात से उनका सामना करना चाहिए। और अगर आपको रात को अगर कोई ऐसे थिंकिंग आती है या ऐसे सोच आती है कि मैं ये कैसे कर पाऊँगा या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप अपने आप को ब्लेम ना करें, आप कोशिश करें कि उसका हल निकाला जाए। और ये सोच के इस बात को टाल दिया करें कि आपके हथियार में जो है वो आप कर रहे हैं, बाकी रब की मर्जी, आप पर उस चीज़ पर ये ना महसूस किया करें कि आपसे कुछ गलती हो रही है या आप ही कुछ गलत हैं इसमें या आपकी कोई ऐसी गलती है। हमेशा रास्ता लेट या ज़रूरी नहीं कि हर काम में आपको झट आप सोचें और साथ ही वो काम हो, उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको बस उसका इंतज़ार करना है, सही टाइम का, सही वक्त का, और अपनी मेहनत ज़रूर करनी है।

और वैसे भी कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, और कामयाबी कभी भी किसी की शक्ल देख कर कदम नहीं चूमती, और हमेशा कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। अच्छा बस बातें तो बहुत सी हो गई, और कोशिश करता हूँ कि साथ साथ आपको बातों के साथ एंटरटेन भी किया जाए, और एंटरटेनमेंट के लिए एक प्यारा सा मैंने मेशअप निकाला है अपनी प्लेलिस्ट में, और ये मेशअप भी आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा, और आप में से कुछ लोगों की पसंद दीदा प्लेलिस्ट में भी शामिल होगा, और अगर नहीं शामिल तो सुन के हो सकता है कि उनको अच्छा लगे और वो कर लें। इसके अलावा अगर आपकी भी कोई डिमांड है किसी सॉन्ग की, या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई सॉन्ग, तो हमें ज़रूर बताइएगा, और बताने का तरीका वही पुराना जहां आप पहले मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। और मैं न्यू आने वाले लिसनर्स को बताता चलूँ कि व्हाट्सएप नंबर हमारा 01157100971। और एक प्यारा सा लव सॉन्ग है, और इसमें कुछ तो रोग लगे इंसानों के लिए भी है, और कुछ न्यू कपल्स के लिए भी है, और कुछ मैं कहता हूँ कि उनके लिए जिनको आशिकी पसंद थी, आशिकी वो नहीं आशिकी फिल्म। और साथ साथ आपको मुझे पता है कि अरिजीत सिंह और फहीम अब्दुल्ला भी पसंद हैं, और उनकी ही ये प्यारी सी आवाज़ है, और इंजॉय कीजिए इस प्यारे से मेशअप को, और आफ्टर द सम टाइम

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे थे प्यारा सा सॉन्ग, और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब प्रोग्राम कॉल ट्राइब जोन विद आरजे मौजम। अच्छा, ये भी मुझे मैसेज आया था कि आज खैर है, आज आपने अपना नाम नहीं लिखा। जी, हमारे रेगुलर लिसनर्स को मुझे लगता है आप तो नाम याद हो गया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपना नाम लूँ, पर मुझे नहीं पता मैंने लिया नहीं लिया, ये मुझे नहीं पता। सो सॉरी, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बताऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर हमें देख नहीं सकते तो हो सकता है हमारी आवाज़ और हमारे नाम से ही आप हमें पहचानते हों कि फलां नाम का आरजे और उसकी आवाज़ अगर आपको कल को किसी भी जगह सुनाई को देने को मिले तो आप सोचेंगे कि हाँ, ये वो आरजे हैं और इनका नाम ये था। हर जी, अपने तमाम नए आने वाले लिसनर्स को मैं फजा 97.1 FM की तरफ से वेलकम कहता हूँ, और आपको वहाँ वेलकम कहता हूँ अपनी फैमिली का हिस्सा बनने को और अपना होने का एहसास देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कीमती वक्त हमारे लिए, कोशिश करेंगे कि इसको इंजॉयबल बनाएं, और इसके अलावा आपको कोशिश करेंगे कि इंटरटेन भी किया जाए। अगर आपकी भी कोई ऐसी डिमांड है या कोई भी डेडिकेशन है जो हम पूरी कर सकते हैं तो अपना मैसेज ज़रूर भेजिए, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी साथ ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आज का प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है कि आपको रात को ऐसी कौन सी आवाज़ें या ऐसी कौन सी यादें या ऐसी कौन से सपने आते हैं जो आपको सारी रात को तंग करते हैं, या ये कहने को कि आपको ऐसी थिंकिंग, आपको डेली रूटीन की थिंकिंग, कुछ बिजनेसमैन हैं जो उनको बिजनेस के बारे में क्वेश्चन या कोई ऐसे इनके दिमाग के साथ चल रहे होते हैं, जिसको हम शॉर्ट अल्फाज में कहें कि अपने आप से मीटिंग आप करते हैं, जो वो हमें ज़रूर बताइएगा आपके दिन में क्या होता है। हर जी, इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं, और मैं सोच रहा था कि मैं अपने बारे में तकरीबन वो साथ साथ मैं अपना आपको इसलिए डिस्कस करता हूँ कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ ये हमें से ही क्वेश्चन करता है और अपना कुछ नहीं बताता। और मेरी नज़र में मुझे लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, और आपको क्या लगता है ये ज़रूर बताइएगा कि मुझे लगता है कि मैं एक छोटी सी चीज़ को भी लेके अगर मैं सोच देखता हूँ तो जब मैं रात को बैठता हूँ सोचता हूँ या सोने की तैयारी में होता हूँ तो मेरे जहन में ये ज़रूर चल रहा होता है कि यार दिन को ये काम हुआ था और ये क्यों हुआ था और इसमें मैं क्या बेहतर कर सकता था। जैसे कि आज अभी मैं बात कर रहा हूँ तो अगर जब मैं जाग को रात को लेटूँगा तो इस वक्त जब भी मैं लेटूँगा, खैर आपको तो नहीं ना बता सकता मैं कितने बजे सोता हूँ, ये तो पर्सनल होती है ना, कोई स्पेशल वन पर्सन भी होता है सबके लिए। हर जी, बात हो रही थी कि हम कितने बजे और सोते हैं, ये तो नहीं हो रही थी, बल्कि हो रही थी कि हम क्या थिंकिंग करते हैं, और मेरे लिहाज से मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, ओवर थिंकिंग छोटी छोटी चीज़ पे करता हूँ। जैसा कि अगले दिन एक मैसेज आया मुझे, इधर ही मैं पढ़ रहा था, उन्होंने जस्ट अपना नाम वगैरह मैंशन ना किया और मैं लिख दिया जस्ट के मतलब रैंडम मैसेज था, और एंड मैंने उनका मैसेज भी ऑन एयर किया था शायद, और उन्होंने जस्ट एक ओके का मैसेज किया। अब मुझे लगे कि पता नहीं किस चीज़ पे मैंने इनको जवाब दे दिया या इस किस चीज़ का ये ओके कह रहे हैं, अब इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था। जब मैं घर गया लेटा, मुझे फिर भी याद आया कि यार वो पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ थी कि उन्होंने मुझे ओके लिखा है, और पता नहीं वो नाराज़ थे किसी वजह से या कोई डिमांड नहीं पूरी हुई या ऐसा क्या था कि जिस वजह से उन्होंने मुझे ओके लिखा। अब ये देखें, एक छोटा सा मैसेज है तो मैसेज भी हमारे लिए एक थिंकिंग बन जाता है या रात की मीटिंग का एक मेन पॉइंट बन जाता है अपने माइंड से कि बताओ जी ये बात क्यों हुई थी। अच्छा, आपके जहन में भी ऐसी कोई ओवर थिंकिंग होती है या आपके भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो फिर आप हमारी तरह ही हैं और हमें ज़रूर बताइएगा। आपके दिमाग में ये बात ज़रूर चली होगी कि ऐसा क्या है जो हम नहीं करना चाहिए और हम करते हैं, और मेरे हिसाब से कि अगर मैं कहूँ कि सोते हुए मैं एक तो फ़ोन यूज़ बहुत करता हूँ, दूसरे नंबर पे मैं ओवर थिंकिंग ज़रूर करता हूँ, बस छोटी सी चीज़ को लेके मैं अपने माइंड को बिठा लेता हूँ, और आप भी मुझे लगता है कि ऐसे ही होंगे, और मैंने अक्सर देखा है कि हमारे लिसनर्स भी हमारे साथ ही
माइंड रखते हैं और हमारे जैसा ही माइंड रखते हैं। हर जी साथ साथ आपके लिए प्यारा सा सॉन्ग प्ले किया और अभी भी कोशिश करेंगे कि प्ले करें। और ये सॉन्ग थे सैयारा और आशिकी 2 और इसके अलावा एक विलन फिल्म के। और आपके लिए कोशिश करते हैं कि प्यारे से सॉन्ग लाएं। और ये डेडिकेशन थी स्पेशल कपल्स के लिए जो इस वक्त इकट्ठे बैठ के हमें सुनते हैं। और इसके अलावा डेडिकेशन स्पेशल थी उनके लिए जिन्होंने किसी के लिए कहा था कि इनके लिए ये सॉन्ग चलाएं, इनके लिए। इन में समझ गया ना, इनका मतलब है वो जो आपके लिए स्पेशल पर्सन है। हमारी गाड़ी की तकरीबन गाड़ी हमारी आधा सफ़र तय कर चुकी है, बल्कि आधा नहीं, आधे से ज़्यादा ही तय कर चुकी है। और कमर्शियल ब्रेक भी तकरीबन आने को है और इसके बाद हमारा प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा शुरू होगा। और आखिरी हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेजेस शामिल करें, क्योंकि आपके मैसेजेस शामिल करने से ही हमारे चेहरे पर मुस्कराहट आती है और आपके चेहरे पर भी मुस्कराहट आती है।

अच्छा ज़हन में एक और चीज़ आई कि जिस तरह, अच्छा ये तो बात होगी ओके कि मैंने अपना वाक्य सुना दिया, एक और बात बताऊँ आपको कि इसी तरह एक चीज़ थी कि मैं अक्सर किसी को मैसेज जब करता हूँ तो उनमें मैं मैसेज करूँ, अगर वो बंदा उसको देख के रिप्लाई ना करे तो मेरे क्वेश्चनिंग चलने लग पड़ती, या दिन को भी या रात को भी ये सोचने लग पड़ता हूँ कि ऐसा क्या मसला है या ऐसी क्या वो हो, मेरे से कोई गलती हुई है या मेरे से कोई कोताही हुई है जिसमें मैं, मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ, या हो सकता है वो नाराज़ हैं इस वजह से रिप्लाई नहीं कर रहे, या शायद मेरी कोई बात बुरी लगी है, या ऐसी कोई ना कोई मेरे दिमाग में अंदर ही अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन चल रहा होता है, शायद कोई मैसेज देख कर कर वो रिप्लाई नहीं करना चाहते, या क्या ऐसा क्या है, मतलब क्या आपको भी ऐसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। और आप भी अगर कोई मैसेज करता है तो अपना टाइम निकाल के आपको मैसेज करता है तो कोशिश किया करें कि उनके मैसेज का जवाब ज़रूर दिया करें, कि हो सकता है कि वो आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हो। और इसके अलावा अगर आपके जहन में अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन चलता है तो उनके जहन में भी चलता होगा, पायन उन्हों का भी ख्याल रखा करो, कोशिश कराया करो कि रिप्लाई कर दिया करो।

अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जो मेरे भी अगर रिलेशनशिप तो खैर साडा के कह सकते हैं साइन ऑफ, मैं ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। हर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप अगर कोई, मैं कहता हूँ कि अगर आप रिलेशन के हवाले से भी, मैंने सुना है कि वो भी बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं लोग। अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं कि यार मैंने उनको मैसेज किया, वो मुझे रिप्लाई नहीं कर ले, पता नहीं नाराज़ हैं या नहीं, या कोई मसला है, ये नहीं पता कि अगले का फ़ोन पकड़ा आ गया। और वैसे भी अगर आप किसी को अगर रेगुलर मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, तो अगर एक दिन आप मैसेज ना करें, कभी किसी को अगर आप भी करते हैं तो आप करके देखिएगा कि एक दिन ना कीजिएगा तो आपके जहन में भी ये बात ज़रूर चलेगी कि आज उसको मैंने मैसेज नहीं किया, और अगले बंदे के जहन में भी ये बात ज़रूर चलेगी कि आज उन्होंने मैसेज या कॉल नहीं की हमें, तो वो ज़रूर आपको मैसेज करेंगे अगर वो आपको चाहते हैं या अगर आपको वो स्पेशल पर्सन समझते हैं। और अगर आपको भी अगर कोई रेगुलर मैसेज करता है तो आपके जहन में ये ज़रूर बात आई होगी कि अगर आप मुझे कोई मैसेज करता है तो अगर वो ना करे तो क्या हालत होती है। बातें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। साथ साथ एक कमर्शियल ब्रेक हमारे बिल्कुल, मैं कहता हूँ, दरवाज़ा खटखटा रही है, और कोशिश करेंगे कि उनको आने की इजाज़त दी जाए, और इसके बाद हम आपके मैसेजेस शामिल करेंगे। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ, आप सुन रहे हैं फजल 97.1 FM एंड डैप, और प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव ज़ोन विद आरजे मौसम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैप प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव जोन विद आरजे मौज़म। आज के इस प्रोग्राम की सफ़र की घड़ियां तकरीबन अपने आखिरी हिस्से में चली गई हैं और हमारी गाड़ी तकरीबन अपनी मंजिल को पहुंचने को है। और आज की इस प्रोग्राम में हमने बहुत सी गपशप की और अपने माइंड के हवाले से भी बहुत सी बताया गया। आपने भी अपने प्यारे प्यारे ख्यालात शामिल किए जो अभी तक मैंने शामिल नहीं किए, जबकि सिर्फ मैंने सुने। लिसनर्स को अभी भी बताएंगे और मैं कुछ स्पेशल रैंडम पर्संस के मैसेजेस मैं शामिल करता हूँ। और आज एक और स्पेशल चीज़ ये है कि मैंने कोशिश की है कि आज उनके मैसेज शामिल की जाएँ जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं और हमेशा से सुनते आ रहे हैं। वो तो चलो वो साथ साथ ही है ना, ये बात नहीं है कि आपको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आपके भी मैसेज शामिल करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि सबको लेकर साथ चला जाए। और इसके अलावा अगर जो भी अभी मेरे साथ शामिल हुए हैं उनको फजा 97.1 FM की तरफ से वेलकम कहता हूँ और एक प्यार भरा सलाम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, और स्पेशली जो इस वक्त मुझे ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं उनको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। साथ आपको बताता चलूँ कि आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक था कि आप रात को आपके दिमाग में ऐसे कौन से ख्यालात आते हैं जो आपको हमेशा डेली रूटीन में तंग करते हैं, या मतलब डेली रूटीन की वर्किंग आपको रात को याद आती है कि नहीं। इन शॉर्ट, या इससे शॉर्ट हम करें कि आपका जहन आपके दिमाग के साथ कौन सी मीटिंग करता है रात को, आपने भी बताना है ज़रूर। हो सकता है कि आपके आज के प्रोग्राम में आपका प्यारे से जवाब मैसेज शामिल ना कर सकूं, तो कल का प्रोग्राम आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो आपने ज़रूर सुना है हमारा प्रोग्राम, और प्रोग्राम का टाइम है शाम 5 से 7 ओनली ऑन इन फजा 97.1 FM विद आरजे मौज़म। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए स्पेशल और इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेकर आई जाए, और इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत होती है और प्रैक्टिकल वर्क होता है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम पहले पब्लिकली पूछा जाए और फिर हम आम तक पहुंचाए जाएं। और उम्मीद करता हूं कि आज का भी टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव भी होगा कुछ के लिए, और कुछ के लिए ऐसा होगा कि जिन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारे माइंड के साथ हमारी मीटिंग कैसी होती है और क्या होती है। साथ साथ हम मैसेजेस भी आ रहे हैं, और मैसेजेस हम पहला शामिल करते हैं हसन फ्रॉम बर्मिंगम। और हसन लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे मौज़म, आपका शो बहुत बहुत अच्छा लगता है, और होनेस्टली मैं भी ओवर थिंकिंग करता हूँ। और इसके अलावा आपने कहा कि स्पेशली जब कोई मुझे व्हाट्सएप पर लेट रिप्लाई करता है, कभी कभी सिर्फ एक सिंपल ओके भी आ जाए तो मुझे सोचता रहता हूँ कि शायद सामने वाला मुझसे अपसेट है, आई नो समथिंग इट्स स्किली बट आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, कीप डूइंग द दिस ग्रेट शो। सबसे पहले आपको हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने होने का एहसास दिया आपने। और इसके अलावा ये एक कॉमन चीज़ है, मैं आपको बताता चलूँ, ये एक कॉमन चीज़ है और हर एक के जहन में ये ज़रूर आता है, और मेरे भी जहन में ये आता है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और आपके जहन में भी आया, ये मुझे बहुत खुशी हुई। और बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप भी, मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी को कोई मैसेज करते हैं तो कोशिश किया करें, अगर आपको कोई मैसेज करता है तो उसका रिप्लाई ज़रूर किया करें। बेशक आप बिज़ी हैं, एक छोटा सा रिप्लाई कर दिया करें कि आई एम बिज़ी राइट नाउ, आई विल बी कॉल यू लेटर, तो ये छोटा सा मैसेज है। या कोई भी ऐसे ही कोई छोटी सी बात कह दिया करें कि अगला बंदा ये ना सोचे कि पता नहीं क्या मसला है, क्या हुआ या मुझसे क्या गलती हो गई,

अच्छा, आज वैसे भी प्रोग्राम का टाइम भी ड्राइविंग का टाइम है और पीक टाइम होता है, और मैं अपने ड्राइवर हजरात को भी मैं मुखातब करते हुए कहना चाहूँगा कि आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं कभी, और कभी ऐसा सोचा है कि आप जब भी ट्रैफिक में फंसे हों और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो और दिमाग कहीं और हो, कोई फ्यूचर प्लानिंग, कोई मंडे का कोई ऐसी बात जो, या कोई फैमिली की कोई बात, या कोई ऐसी मतलब जो कैब चलाते हैं उनके लिए कि कोई ऐसी पैसेंजर जो आपके साथ स्पेशल पैसेंजर जिसने आपका कोई बात अच्छी लगी हो या किसी की बात बुरी भी लगी हो, आप वो सोचते हैं कभी ऐसा हुआ? या कभी ऐसा आपने सोचा कि जब आप एक सफ़र पर जाते हैं तो आप जस्ट कंसंट्रेट करते हैं अपने सफ़र पर, कभी आपने आसपास की कोई चीज़ ऐसी नोट की कि कोई ऐसी क्या हो रहा है आसपास, या विंडो डाउन करके कोई आसपास की बिल्डिंग्स में कोई मतलब कोई स्पेशल चीज़ जो ऐसी या आपकी थिंकिंग होती है ऐसी, या ये सिर्फ ये भी मेरे साथ होता है? आपने भी ज़रूर बताना और अपना होने का एहसास देना है। इसरा मैसेज शामिल करते हैं सना फ्रॉम मैनचेस्टर। हाय आर जे मौज़म, आई एम लिसनिंग टू यू व्हाइल ड्राइविंग बैक होम फ्रॉम वर्क। मुझे सबसे ज़्यादा फ्यूचर की ओवर थिंकिंग होती है, जब जॉब ठीक है फैमिली भी अच्छी है, बट समथिंग लाइक आई एम कीप थिंकिंग के नेक्स्ट ईयर क्या होगा। जी बिल्कुल, स्पेशली यूके में रहने वालों के लिए ये फ्यूचर प्लानिंग ज़रूरी है, और सेविंग इनफ में या नहीं कैरियर। हाँ, आप तो बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग कर रही हैं,

हर जी ओवर थिंकिंग की बात हो रही थी और ओवर थिंकिंग ही हमारे चीज़ में है। और इसके अलावा जो सना भी बात कर रही थी वो भी एक मैं कहता हूँ कि अपने हिस्से की मुझे लगता है कि ये ओवर थिंकिंग ही करती हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो होता है अच्छा होता है, बस आपको अपने आप पे होना चाहिए कि आप क्या कर रही हैं, आप अच्छा कर रही हैं बुरा कर रही हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अच्छा कर रही हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आपको लग रहा है कि आपके जहन कह रहा है कि आप ये काम अच्छा नहीं कर रही या आपको गुड वाइब नहीं आ रही तो कोशिश कीजिए कि उसको काम को आपका जो बैकअप काम रखा हुआ है उसको शुरू कर लीजिए। और वैसे भी हमेशा काम वो करना चाहिए जो आपके मन को अच्छा लगे, ना कि मजबूरी में करना चाहिए, क्योंकि मजबूरी में हुआ काम हमेशा गलत ही होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताता चलूं कि हमारे तकरीबन गाड़ी अब अपने सफ़र को पहुंच चुकी है और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ रहें और हमेशा रहें और कोशिश करेंगे कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रहें। और हमारा और आपका साथ अब यहीं तक का था और मैं आपको इस आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपके लिए प्यारा सा एक सॉन्ग प्ले कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमारी डिमांड नहीं पूरी की, और ये डिमांड भी किसी की ही थी और किसी की डेडिकेशन थी अपने प्यारे से फ्रेंड को। और सैयारा 2 मूवी से ये लिया गया सॉन्ग है और हम कोशिश करते हैं कि इसको भी प्ले करें। और साथ साथ आपके मैसेजेस तो आ रहे हैं पर क्या करें। खैर जी, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो या किसी को अगर कोई बात ऐसी लगी हो कि आपके दिल को ठेस पहुंची तो बंदा ना चीज़ को माफ़ कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा क्या कहें अपने अच्छी यादों में हम मुझे शामिल कीजिएगा। और आज का प्रोग्राम का अहतमाम हुआ और इधर तक का सफ़र हमारा था और हमारी गाड़ी कोई ब्रेक लगने वाली है और कोशिश कीजिएगा के कल ही भी इसी टाइम पे मतलब 5 बजे हमारे साथ शामिल होइएगा और हमारी ज़िंदगी हमारी फैमिली का हिस्सा बनेगा। सो एंजॉय करिए ये सॉन्ग और आफ्टर दैट सॉन्ग अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेहबान।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नोटिगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।
8: ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई कुड बी चेसिंग बट माय टाइम।
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मज़ीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: You are listening 97.1 FM।

0: You're listening 97.1 FM.
1: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
2: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
9: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus, and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic, and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner, and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to Radio Fazer on 97.1 FM.

0: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।
1: जनाब अंदलीप शादानी की है।

कहते हैं किरणों को रेस और धनु रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे रहे।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: रुमान।
1: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816।

0: Address 35 Lenton Boulevard, Lenton, Nottingham, 972ET.
1: Peshawari Dera.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

0: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
9: hayatweddings.co.uk।
10: यू आर लिसनिंग टू 97.1

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodsboro Road, Nottingham NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट।
4: टेस्ट भी, वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट।
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
4: द स्टेशन दैट प्लेज
5: फुट टैपिंग म्यूजिक।
6: फजान 97.1 एफएम,
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 एफएम एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइक कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट नॉटिंघम एंड 7680 ऑन संडे 2nd August 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM। मजीद मालूम के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पाकिस्तान फोरम .co.uk टू बुक

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.